0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका मास दे जिना नो येंदा ला यांस चाउ रे हो होयो मजो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दे पेडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के के शाम बत की छि इन रो ते मो ने ला सान रो रे
1: ओ रे जे रे
2: लंका
0: के तो तो हमें छाया बस के छुना जे पिन जे जो
2: को यो को या
3: 把做金宝没有委屈，场面解决难困难，马上有呢，也不有。这句难不毛那样，爹娘这句早晚有。句句难句，用了土可得牛子，千里过地没动啊当，可得金钱多了没动啊，出来多呢，可得没动啊，可得通过。
4: 三门也往记下去，搁清不了。最近俺去，真正这次来送这去年，着了店家的，也是学生的店面着了很多年往下去，给你写的。店家的店面这句可有钱，全部。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de ngo ni xi li no le chan chan jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जुब सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यो से जेजो लंका के मास दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो मछु जो जटा मुन्यो जो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका दि फेंडो रे
0: जे जे तंगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो तिंग ओ ने ला सान रो रे और रे रे
1: लंका क्यों तो हमें छाया बस
2: के छना छे छे
0: मन नी जे बिन जे जो को यो को या पो ता
3: को यो ला 把做进步没有危机，场面解决难困难，忙着有呢，也不有。